पार्टी सुनेगी ताकि अपना काम करना लगना ही कार्यक्रम चाहिए और आप उठा करना है तो लगा ही था तर परिणाम आफ्नो नीति नियम कतिको जारी गर्न खोज्ने अथवा आर्थिक नियम नै गर्ने

0: सहन तू कर कर अच्छा हो गए थे याद कर देना हमारे तुम्हारा समझा कर दे ये जो बताओ
1: वो समस्या तो अधिकतर रिसीव समाधान होती है।

0: ser ईश्वरी कर्म प्रतिगमी अर्थात रक्ता पताजे पर्वा
1: Thank you.

विश्व भर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा चयनित कला की प्रस्तुत संग

मैंने पहले नहीं थे तो मैंने बेहतरीन में मैंने क्रीम में खड़ी हमारे घर के क्रीम के ठिकाना तब करते रहे चिंता तो कहाँ पर निकले नहीं भाई लोग खड़े रहे हैं नहीं अब आज नहीं कल नहीं मैंने डॉक्टर ने कहा था जाओ मैंने मेरे कहा बजी बोले आज मैं लुटे आने की मैंने सोच रही थी तो मैं जाऊँ वो कहता नहीं नारंग जब अपनी पाँव धो के धोने पानी पुआई तो मैं मेरे मन पे इसका खड़ी बोलते मैंने फोन करके कहा तो मैंने मुझे अपने हिरन नहीं अपनी चिंता की थी मैंने डॉक्टर कहते मैंने कुछ मौसम करा कम ही उम्र में नहीं जाऊँ तो मैंने उठा करी बदल बदल उठी थी पकड़े हैं तो मैंने वो उठा तो ये मुझे अपने घर में चल दिया तो मैंने चाय चाय चाय चाय की रात में दूसरे रात में गई तो मैंने कहा कहाँ का किसी मैं फिर कहते तो नहीं मैंने चाय सूंगी मैंने हर बोल की रानी की मैंने फूट करे तो कहते हैं तो मैंने वहाँ हीरो की रात में दूसरे बदल पुकार तो वहाँ मैंने वो मैंने कह रही है कि चार सवार मैंने दे दे दी कि मैंने मूर्ति के फूट के निकल आए थे कि तभी वो गए वहाँ अब वहाँ पर जो कहा बिचार चलने आई है तो कहा चली मेरे पुकार तो वहाँ पर ये वो हर बोल की रानी का तो हाँ करें अभी वो गई तो मैंने पास की किताब क्या समझता है मैं मैंने उन्हें गई है तो फिर घर जाके मैंने कोई बाबा मैंने वो हर बोल की रानी का तो मैंने लिखता घर छोड़ो बनाई थी ये लोग मेरा जो

हमारे लोग अपने फिर को मैंने खाए थे तो मैंने अपने घर उठा मैंने उठा मैं पानी थी तो कहते घर करो मैंने अपने पानी का पीता तो मैंने फिर गई तो मैंने पानी में पिए रखा तो मैंने पिए फिर बताया तो कहता फिर इस पानी को मैंने हर बोलती रानी तो वो पिए पिलाई तो फिर बोलते हुआ कहता है तो वो दिन के लिए पिए था मैंने दस इक्कीस मिनट नमक का पानी घर के पर लगा मैंने उससे हाथ की काट देता है मैंने कुछ नहीं किया उससे जब तीनों पूरे कर देता फिर मैं पोल्ट्री वाली को काट करके मैंने मैं जीतू तो नहीं पोल्ट्रो मैं पिए का छो आज मेरी आय से सबसे कर जाता है बोले तो कहते मैंने फिर था तो ये पीछे कर आते और तब पर ये सब याद पड़े सभी सुबह माता रुको बरिकवा हर बार जंग नहीं जंग की पावनी तब सब उपर हाथ कर सब बोल मारते हैं भगवान को नहीं देते तब नहीं हो फिर मैं उसके रहना तब मैं कहते हैं हाथ पर सुखा कर लख लख लख लख मरी अब सोल के खाते की बता रही थी हमारे जी ही पत्रों खाते में तुम्हारा तब नहीं हो

ज्ञान सभा 6 बजे हमार संदेश में अपना स्वागत बड़ा सक्रिय बिंदु संग्रह में हम कुमार रेडियो प्रभाव एफएम पर दिया से उत्पादित हमार संदेश पर दिया तो साथी एफएम राजापुर बहर एफएम ग्लोरिया बाकी का रेडियो पोर्टिबल एफएम गोलपुर को रेडियो खाते मानव जानकी गांव पालिका बाकी मसले किसान प्रसारण बीतगा हमारे संदेश का गुरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे बांस

0: थे तो इसमें चांग चिंता कर रहे पसंद नहीं स्कूल जाने का पढ़ाई कर रहे ना काम कर रहे हो ना आना वस्त्र ग्रुप में वो लोग गाली करने हाथ काउने जिसको वो लोग जानो चिंचित रहो पैकेज में सक्सा वो आयु उम्र में रहो और एक किसी को मन में बोला साथी भाई को मारते मिले अथवा घर परिवार के और सदस्य को मारते मिले वो लोग बुझाने को जिन तो डॉक्टर काल लगने त्यसै चाहिँ गर्दाखेरि त्यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
1: साथीहरू शरीर बस्नु प्रतिस्पर्धा होइन, कोही अगाडि कोही पछाडि भन्ने कुरा होइन।

अधिकारी होंगे। राष्ट्रपति अपने दृढ़ समर्थन रहकर बताया था सामाजिक संचार रियासत यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लायन और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने आईसीसी समर्थन करेका छन्। 120 भन्दा बढी देशको समर्थन प्राप्त आईसीसी युद्ध अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको छ।

लगा के उत्तर खबर को उनका वकील उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्या पीड़ित रहे को बताया। युक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को टोली का एक वरिष्ठ सदस्य रहे यूरोप को भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लगातार छापा मारे पी पद बर्खास्त कर। इसबीच युक्रेन का पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदरोफ ने निर्वाचन कराने आह्वान कर। भारत को कोलकाता में एउटा सस्तो होटल में आग लगी होता कमती में 9 जना को ज्यान गए। अधिकारी अनुसार मृतक मध्य एक बालक भी रहे। प्रारंभिक अनुसंधान ने एयर कंडीशनर विस्फोट भएर आगलागी शुरू भएको हुन सक्ने देखाएको छ। घटना में 8 जना घाइते भएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक में आज उपस्थित 46 सांसद मध्ये 31 जना मुख्यमंत्री

नेपाल सत्ता साझेदा को सहमति पछि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह अपमत में पड़ेगा थे। अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाहले प्रदेश सभा बैठक में उपस्थित 36 जना सांसद मध्ये 21 जना विश्वास

Master in the Parigata, Vivina Puranaka Tanti, Kirsipikasta, Kamanda Paprika, Kiria Serikis of Samuaru, Namikrana, Nayakasan, Vedata, Naprika, Tatra, Purnaichu, Kirs of Samuaru, Natakanagi, Noxil, Pomutinka, Havasika, Tarusi, Yusan of the Saran, Pomiki, Poikistin, Hatha, Tirasi, and also the Pitra, his Parika, Kirsipikasta, Kaman, Nigitanti, Tatakana, Vikrana, Purnaka, Samai Kuza, Kaigurai, Yusan of the Saran, Kakikosa, Sakai, Kunsusi, Kalam, Vitanamuna, and the Vikan Purani, Kaswarina, Parika, Kirsipikasta, Naku Hatha, Kirsipa, Kendra, Sampa, Kumarapuna, and Rucha. Kepasil semua bidang kohakma, anisusi di pemotim semua bidang ini bedan, anisusi saya pemotim di bedan, semua bidang saman di semua kurniai perdiri, semua data permata perdiri, semua kuchap, alat sekukur, alat sekaliwatan gue kohakma, naya semua data kohakma. अनुसूचि बी को मजिन समूह अधिकरण ने बेदान अनुसूचि सात को मजिन की तरह पुनरुत्मा अनुमति बेदान भी करती समूह को प्रत्येक सदस्य दल को नागरिकता को प्रमाण पत्र को प्रतिनिधि उन्हें करने को सिफारिश समूह प्रथम को निर्णय सहित तीन पटक समूह को मासिक परीक्षा तथा वचन के पर प्रतिनिधि मासिक कार्योजना समूह को छात्र पासवर्डी नगर पालिका को कार्यपालिका को कार्यालय पासवर्डी पर दिया।

istilah agama tadi terlebih terbongkar di rasmi atau mari tuki. Baru itu begitu tiup ke voltara atau rekan suara ko nanti sih terbaru di mana istirahat di tiup. Kecil mobil yang apa lagi itu anak itu khusus kali. Biar anak mobil anda kita pun kita akan dari pagi dari pagi maju apa hari ke pagi waktu kami apa nusa tonton terkait nanti. British samraja baru dekii nusa ni ko sejarah sampai. Etik lima tujuh kopi di sekitar sentra mati antara pusat di tengah titik kali kembali tengah bot kepada tetapi tengah posisi kosong itu merumur mohon semua ispur sekali tu ia terma tujuh kopi kata nabi gai kor kobar ma ikut cerita kerum sunyi dari kopi semua perkara kesenjut mai mohon perintah beri merum diriku senyut dari merum semua ispur sekali tapi kali bayi puni orang bakti kepada puni gitu tapi kami rasa kalah mana asal jadi macam मानेटर में गई था वो किरा अन्य प्रकार ने ताहम संगर एकार कर दी गई दरबार तो नजीक एक रात आई मानी सब जिसको राज्य तक स्थिति को चार साल करने लगी थी जिसको जी लुटुरी संगर पूरा एक दिन बिताए पूरा एक वर्ष तक प्रतिबंध लगे तब भी अपनों पार्टी को किराया कलाप संगर पूरा जानता थी उन्हें जॉन्स बोर्डों में अमेरिका को बोर्डों के दीक्षण तथा प्रदेश में बोर्डों शक्ति देखी एकदम जिद्दी थी हमें प्रदेश राज्य शक्तिशाली बनाना चाहते हो भले रंग ये उन्हें आश्वासन दी इसमें सुनोगे धर्मों में डॉक्टर नायक और तथा जिसमें इंडियन कांग्रेस का कार्यकारी समिति का सदस्य संघ बिठा करें क्या नाम के सरकारी प्रतिबंध संघ कसरी चुनी बने बनाए मसौदा करें दरबार देखी समय हिंदू महासागर को सामने बसे का सना सना सुंदर नगर में आए रहते हैं अनेक प्रकार का उसका दर्शन डॉक्टर ओकुले करी है मौन ताका पुनराद खुशी को अपनाविक थियो त्यहाँ का परिचित स्थान देखा पहिला तो स्मृति फर्किरह्यो त्यही समय पछि घर फर्कँदा अनौठो लागिरहेको थियो तेह्र वर्ष पछि घर फर्कँदा आमा र साथीहरूसँग भेट हुने कल्पना वा उत्साहित थिए मेरो त्यहाँ आउनुको अर्को उद्देश्य बाटोका अधिकारीहरूसँग बुङ्गा प्रणालीको परिवर्तनको समीक्षा गर्ने पनि थियो बुङ्गामा एक सय आठजना सदस्य थिए जसमा एक चौथाइ घोडा र तीन चौथाइ अफ्रिकन थिए उनीहरू सरकारले अफ्रिकी इलाकामा कर लगाउने तथा सडकको सुधार जस्तो स्थानीय क्षेत्रको सुधारको निम्ति सल्लाह दिन्थे उनका ट्रान्सकीको

সাথে এভাবে একা মন্দিরে টাকা মনে মনে তার স্থিতি বাদে যে উনি পরিবর্তন কলম জানা সে জানা সাতাশি প্রতিশত জমিন 3 লাখ ঘোড়া মালিক অধিকার মধ্যে 13% জমিনমা 8 লাখ অফ্রিকানায় সীমিত করিয়েছে त्यो कार्य उद्देश्य गर्नलाई थाला मानिसहरूलाई अलग गर्न नीति समर्थन प्राप्त गर्न थियो सरकारले होमल्यान्डको नीति अपनाएर फ्रान्स कि अर्को अफ्रिकन इलाकामा गोरा मानिसहरूलाई स्थापित उद्योगमा सस्ता कर्मचारी र सस्ता मजदुर उपलब्ध गराउन चाहन्थे साथै अफ्रिकन मध्यवर्गलाई अधिकारको अभिव्यक्ति गराउनको लागि तयार पारेर स्वतन्त्रता संग्रामलाई विकसित गर्न चाहन्थे उहाँले गरेको असफलता तथा सरकारको नीतिप्रति आफ्नो निराशावादी दृष्टिकोणको कारणले भविष्यका बारेमा सोच्नु थाले। फेब्रुअरी 1956 मा उमा ताताको जमिन